आदि खुला खबर को साथ में गरिमा विकास बैंक लिमिटेड सुरक्षित भर पर्दो बचत तथा आकर्षक ब्याज दर का लागि प्रतिबद्ध हिमाल सुनचाँदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहनाहरू ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनचाँदी पसल वालिङ बजार स्याङ्जा।

0: फार्मेसी को अगाड़ी
1: संपर्क फोन नंबर 0635 90 18 मोबाइल 9840516535 र 9813769611
0: न्यूनतम शुल्क में गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण को लागी वालिंग को एकमात्र स्वास्थ्य प्रयोगशाला वालिंग पैथोलॉजी प्राली
2: रेडियो आदि खुला 105.4

0: समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिकै रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच घरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
1: ठाउँ।

आज कार्यक्रम को क्रम में राखी सोचो अंतिम व्यापारिक विश्राम संगे फिलहाल स्वागत करते कार्यक्रम का विस्तृत भाग में हमें आज बुधवार व्यवसाय में रहे विभिन्न नया तथा पुराना तेज गीत भाका विशेषकरी अज धीरे पुराना तेज गीत भाका कार्यक्रम में स्थान दीद वहां सहय यात्रा करते अब भी हमें कार्यक्रम छुट्टी जान पड़ने समय में आईपुगेका छौं। वहां मज रही अने ये मधुर खाल भाका सहय यात्रा करने मन हुई छुट्टी जान पड़ने हुआ आगामी श्रृंखला में रहकर विशुद्ध नेपाली लोकगीत भाका सहय यात्रा करने विश्वास दिलाऊ कार्यक्रम समय अवधि भर सुनेर साथ दिन संपूर्ण में धीरे धीरे धन्यवाद का शब्द व्यक्त करते जाते जाते तबर समक्ष पृष्ठभूमि में बजी रह भाका तीज गीत भाका छोड़े आज के व्यवसाय विदा हो ज्ञान सूचना और मनोरंजन का सुंदर गुना रेडियो आदि खोला यहां आज को दिन में यहां अब को बाकी पल शुभ रहोस् मंगल रहोस् नमस्ते जय गीत जय संगीत।

0: सुनिए सुनिए, आइए हम लोग दिल्ली बाजे का
1: समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच घरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।
2: पहाडको सुख सुखे दिल
3: आमा मामा कति राम्रा गीत बोलेका कता राम्रा राम्रा सन्देशका होइन यो त साँच्चै 105.4 मेगाहर्जको रेडियो आदि खोले रहेछ क्या।
4: नमस्कार, म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको भोक लाग्यो। तपाईँ यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदि खोला FM 105.4 मेगाहर्ज।

0: रात में अलिया हम लोग अनिमा चार बजे के छात्र
1: इस समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल पोसल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़ी को पांच गरेता कुनाको लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।

0: सुनिए सुना, आइए हम लोग अनिमा 6 बजे
1: इस समय को साथ में जेतुल सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़ 5 घरेता कुना को लाइन जैसी 15 जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: रेडियो आदि खोला 105.4
2: रेडियो आदि खोला 105.4

एलजी ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कंप्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भाई पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी लाइफ गुड